होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत थी जन्नत है।